को सुनी जिंदगी बाटो मोड़े जाँदाखे शब्द बखत सांगाई लय सर्वराज सांगाई सुर सपना शाही र सर्वराज सांगाई।